सारे पासियों आसां टुट जान ते फिर तैनू गुरु दिसदा है। नहीं बई, जिम्मे कम पैण ते गुरु नूं सिमरदा है उवे गुरु नूं रोज सिमरिया कर, फिर एक बारी भी गुरु नूं आख देवेगा ना महाराज औखी घड़ी तो बचाई ते सतगुरु तैनू तत्ती वाह नहीं लगन देंगे। प्रभ सिउ लाग रहे हो।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी दा आनंद माणिया है। असी आप जी दा ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करदे हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गलबात पंजाबी विच करदे हो तां आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समां केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां समां उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है तां ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते

एक ताल दो ताल हुण तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हुण तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है, इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है। फिर पढ़दे क्यों नहीं, पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहिब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमा विच वहमा विच पै गया गुगे जठेरे मनन लग पिया मड़ी मसाणी मनन लग पिया इहदे मन विच द्वेष आ गई इनू ए पता लग गया।

चार कुरैता छड़ देन ते पांच ककारा विच पक्के हो जान रैत रखन वंड के छकन सरबत दा भला मंगन रैत नामियां दे।

इना विकारां तू किस तरह बचा मैनू नहीं पता। मोको बाहां दे बीटला जिस तरह।

जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नूं पकड़दा। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई एक बारी कंग उठे

उस हरी ने बाकी इंसाना नु भी पैदा किया। तुहाडे विच भी हरी, उन्हां विच भी हरी, फिर क्यों जुलम करते। ये उपदेश सुनिया उन्हां आत्मखोरा ने नामदेव दे चरणा ते मत्था टेकिया और अगे तो तौबा कीती कि असी हुण ये पैड़ा काम नहीं करांगे।

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए। जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसे है, तकड़ी मंगाई, तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पे है तुलसीदास जी दे उते राम लिखे है। ते सेठ ने हसदिया होया

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर

शिवजी भगवान ने जदों अर्जुन दे नाल युद्ध किया तां छोटे दे रूप विच भज के उस जगह आए अर्जुन तों हार के, और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप विच जिसनों हिंदी विच सांड कहंदे ने ओदे रूप विच भजे आए, ते ओ जिहड़ा पहाड़ सी ओदे

बदलावन दे। मैं ते कर्मैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई जिस अकाल पुरख ने

निरंकार हे वाहिगुरु हे अकाल पुरख तू सारिया ते मेर कर सारी सृष्टि ते मेर कर तू मालक है तू प्रतपालक है तू राखा है सबे जी समा तू सारिया ते मेर कर तू ईरखा द्वेष वैर विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर सारे अनु समत बख्श जगत सड़ रहे है अगा लगिया हुई ने तू कृपा कर तू मालक है सारिया ते कृपा कर जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार जित द्वारे उभरे जिते लेहो ओबा तू सारिया ते मेर कर सारे तेरे ने तू सारिया की कृपा कर ये अरदास है कि अन्न पानी मुछ उपाए ये पदार्थ सारिया नू दे सारिया ते कृपा कर दुख दलिद्र धन तर सारिया का दुख दूर कर दलिद्र ये सब दूर कर तू सारिया ते मेह कर

कमाल दियां गल्लां की कमाल दे बचन कहे कथा कीर्तन मन न लावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ हिरे जो माल जो पंक्तियां तुसी सुनिया कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने ए भी जुआ है आखिया निंदा जुआ हिरे जो माल महा दुखावे तिस को काल आ देख लो नाल नाल मन नूं तोलियो भाई किथे घट हां किथे पूरे हां पूरे होना है बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नूं धारण करना एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी सिख एक होर काम करे

ग्रंथ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आखो सतनाम कहंदे सिख एक होर सुभा रखे वो केड़ा जी दूहू ग्रंथ में बाणी जोई दसम ग्रंथ ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नू की करे जी गौर करे जी।

तीन चीजा एको जी खंड आटा ते घ्यो तीन चीजा एको जी इनू त्रिपावल की दे कहते हैं।

तो हम तक की सुने हैं अपनी मन भी मत में प्यार दे। अगर अपने आप में सोचते कुछ कहने हो तो वो एक गलत फहमी है। फिर महाराज जी क्यों करिए, दसो क्यों करिए? तो कहेंगे हम गुरु की मत तू लेह ए आने। इंसाफ सिंह गौर न सुनो, इसे शब्द महाराज जी ने वर्त्या है ए आने। आने शब्द जरा निके निके बच्चे बैठे ने इन्होंने वर्तो। सुखमी साहब जो महाराज जी ने उचारी सी तो सुखमी साहब के लफज आने जरा उन्होंने निके जो है न्याणिया जो 5-7 साल की उम्र में सी ये शब्द उन्होंने लिखा से उन्होंने बेचारे भोले पालन के भी समझ नहीं सी आने। तो सियाने फिर आने कौन हैं? सियाने वो हैं जिन्हों के पास सियाणक नहीं है पर उन्होंने वहन है सियाणक। जो ग्रोन न्याणे हैं ना तो उन्होंने आता है ग्रोन न्याणे। जो ग्रो हो गए हैं लेकिन हम हाले न्याणे ही अते मनवे भी नहीं हम कि अभी हाले न्याणे हैं। वो तो कोई कोई गुरसिख अजिहा होंगे है जो आखे हम बार तू गुरपिता हैं जो मत समझाए। तू गुरु पिता है अभी अते अभी बालक हैं हाले। लेकिन कौन कौन प्यार है कि अभी बालक हैं? जब इंसान कहता मैं तुझे बच्चा समझ दो मैंने न्याणा समझ दो मेरे तौले आ गए हम तो मैंने तुझी समझाने की कोशिश कर दो। जिस तरह के तौलिया के नाल अकल आती है वह तो कुछ संबंध ही नहीं उसके नाल। तो साथ संगत जी हूं तक आप जी ने यह सुनिया है गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत अपनी सारी सियाणत क्योंकि साढ़े पास नहीं है छड़ दो। तो कहते हैं गुरु की मत को ले आने आने गुरु की मत लै क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वह गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती। बिना भगती तो बहुत व्डे व्डे सियाने जो हैं वो अपनी सियाणप के डुब जाते हैं अपनी सियाणप के डुब जाते हैं। इस करके प्रेम नाल आओ इस पंक्ति लगाओ उपरंत अगे चल रहे हैं।

एक्सपेंसिव हों, कभी स्ट्रेसफुल भी हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी का कारण बन रही हैं। और महाराज जी कहते हैं सारे का सारा अवॉइड किया जा सकता है जस्ट बाय लिविंग सिंपल जीवन की। हम उसकी मिसाल सुनो, कबीर साहब का श्लोक है सिंपलिसिटी से, कहते हैं कबीर खूब खाना खिचड़ी या मैं अमृत लोन, कहते मेरे लिए खिचड़ी ही जरा है वो बड़ा खूब स्वादला खाना है, जेदे सिर्फ लून ही पाया है तो अमृत वर्गा उसका स्वाद है, ना तो बनाने में चिर लगे, ना उस दे नाल फैट प्रॉब्लम होवे, ना उस दे नाल कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होवे, तो ना ही उस दे नाल ग्रोसरी का बिल वधे। कहिंदे खूब खाना खिचड़ी जां मैं अमृत लोन, ना ही वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जेरा रोटी कार नहीं गला कटावे कौन, जेरा रोटी कहते मास वाली रोटी ने चला मुरदार लियाओ उन्हें खिलो उन्हें बनाओ घर का जाता है जो है वो मैला करो, फिर जिन्होंने अब खावे वो कदे सामने नहीं खाएंगे, कुदरत के ऐसा निगम नहीं है जो कर्म करोगे उसका फल उसे तरह भुगतना पाएगा। कहते हीरा रोटी कार ने स्वाद के बदले मैं किसी जीव का लिया के गला कट दिना हाँ तो उस कर्म का कोई नतीजा नहीं निकलना, उस कर्म का भी तो नतीजा निकलना है। कहते कौन निकले जा स्वाद के बदले अपना गला कटवावे, कबीर साहब का श्लोक है हीरा रोटी कार ने गला कटावे कौन, कहते मेरी ऐस इन्नी स्वाद की गल बदले मास, हीरा रोटी का मतलब होंगे मास वाली रोटी, कहते मास वाली रोटी के बदले इन्नी गल बदले कौन अपना सियाना बंदा गला कटा है, कहते मेरे लिए सादी सिंपल खिचड़ी ही अमृत वर्गी है। इतों भाव है सादा खाओ सादा जीवन जियो, यह है गुरमत की सिक्ख्या गुरमत की टीचिंग। फरीद साहब बाणी चाहते हैं फरीदा बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, जिहड़ा पहले ही बुरा है जिहड़ा पहले ही बुरा है उसनू होर बुरा बनाना है, उसका बुरा करके तो उसकी होर बुरा बना दो, बुरा होने के नाल वो अपनी आत्मा का नुकसान कर रहा अपने जीवन का नुकसान कर रहा अपनी मत का नुकसान कर रहा अपने जीवन को तबाह कर रहा बुरा होने करके, होर की बुरा उसका करना है, होर उसका बुरा की करना है, अगर होर तुम उसका बुरा कर लग पे तो फिर उस नाल भी ज्यादा बुरे हो गए। जिदा बुरे का भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, हुण ए बहुत मुश्किल गल है गुस्सा मन ना हंडाए, कौन नहीं चाहता कि मैंने गुस्सा ना आए, पर गुस्सा सानू सदमा नहीं आ जाता, यह है गुरमत की तालीम, गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। कहते अगर तू इन की गल कर ले तो तू देही दे अनेक रोगों तो बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रोग सिर्फ पैदा ही गुस्से करके होंगे हैं, पैदा ही इमोशनल प्रॉब्लम करके होंगे हैं। तो साहब सिंह जी अगर आप जी के सामने मैं दो किस्म की मत अलग अलग करके रखी है, मन की मत जी सानू इधरों उधरों मिली है अभी असं उसमें मत समझी बैठे हैं, अपने आप में अकल वाले अच्छे मत वाले समझी बैठे हैं, कदे सवाल नहीं किया क्वेश्चन नहीं किया शक नहीं की कदे सोचा नहीं कि मत कितों लई भी है वैसे ही कितों आ गई है, नहीं मत सानू आई नहीं असं वड्डे जरूर हो गए हैं, मत सानू आई नहीं असी मत वाले होने का भरम जरूर कर लग पे हैं, मत सिर्फ इको ही ढंग दे नाल आंदी है गुरु की मत तू ले आने भगत बिना मौजूद देता, जितनी देर तक गुरु तो असी मत नहीं लेंगे फिर वो इंसान अपनी जिंदगी का हर बोल हर कर्म हर सोच वो सोचे वो करे वो बोले जो गुरु की मत के नाल बिल्कुल मिलती हो, जो गुरु की मत के जितों हो तो वो कह सके आ मैं जो बोल रहा ये मेरे बाबा जी के बचन हैं उन्होंने जो बोल रहा ये मेरे अपने नहीं हैं। मैं मस्कत एक दफा कीर्तन से गया तो कीर्तन के बाद एक सज्जन कह लगे भाई साहब मैं आप जी के नाल एग्री नहीं करता डिसएग्री करता, वैसे भी जितों तक मैंने याद है कीर्तन के दौरान मैं एक लफज भी अपने कोलों नहीं किया,

पैर ना रखे उनका शुक्र धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंदनान पानी थोड़ा खाया, कुंभ किसी अगला नदे चले सुया, वड्याई वड्डा पाया।

कबीर साहब कह रहे ने मैं ता गुलाम हां, मैं ता ओदे घर दा नौकर हां, ए हुण ओदी मर्जी है।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक ता निंदका ने पहला कन भरे सन। बादशाह कहंदा कबीर तू मुसलमान हो के राम दा नाम जपना है, फिर मैं बादशाह तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने, बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया

तू मेरी हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुग अटल।

बादशाह नु क्रोध चढ़ गया, सिपाहियां नु हुक्म दिता एदे हाथ पैर बन के इनू गंगा दे विच डोब के मार दियो। मैं देखना इस दा राम इस नु किस तरह बचांदा है। कबीर साहब दे हथां पैरां विच बेड़ियां पा के गंगा वल सिपाही लै के तुर पए। एक बेड़ी दे विच कबीर साहब नु बठा के सिपाही गंगा दे अध विचकार लै गए, जिथे बहुत ही डूंगा पानी सी। कबीर साहब दे पेट दे नाल एक पत्थर बनिया, कबीर साहब नु चुक के गंगा दे पानी दे विच सुट दिता। कबीर साहब जी आप बयान करते हैं।

छिपाई हाली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहले ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा है ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर कठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे होए अपने श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

आख्या क्यों महल माड़िया दे मगर लग्या, ये कोई नाल नहीं ले जा सकिया। बड़ी गल है जदों तू पंज भूतक शरीर त्यागेगा ता कोई दो गज कपड़ा तेरे ते पा देवेगा, बस इस तो वध होर कुछ नहीं। क्योंकि कौडी कौडी जोड़े है, जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कुछ मिलियो ले लंगोटी तोड़। अगे शाहूकार जदों लंगोटी बनते सन ना ते लक विच सोने दी जंजीर पा के रखते सन, ते कबीर जी वेख रहे सन एक बड़ा सेठ जदों मरिया इसका शरीर अगन पेट करन लगे ते घर वालियां ने वह लंगोटी भी तोड़ ली। ए सोने दी चैनी भाई किधर लै चलिया, इसलिए आख्या तेरे नाल कुछ नहीं जाना, ये सब इथे रह जाएगा, नाम दा धन तेरे नाल जावेगा। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरे सवार, कारज साढ़े तीन हथ कनी तो पौने चार।